0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যারা সমুদ্রে অথবা নদীতে মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে যে 28 সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা থেকে 30 সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত মায়ানমার বাংলাদেশ উপকূল এবং সংলগ্ন পূর্ব মধ্য ও উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঝোড়ো আবহাওয়ার কারণে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় 45 থেকে 55 কিলোমিটার এবং সর্বোচ্চ 65 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। মৎস্যজীবীদের আগামী 29 এবং 30 সেপ্টেম্বর উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন বাংলাদেশ উপকূলে গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে জলস্ফীতির একটি সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে যে 29 সেপ্টেম্বর রাত 11:30 পর্যন্ত 18 সেকেন্ড থেকে 21 সেকেন্ড সময়সীমার মধ্যে 1.1 মিটার থেকে 1.2 মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ঢেউ দেখা যেতে পারে। এর ফলে নৌ চলাচল এবং অন্যান্য কার্যাবলীর ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন 5:59 হয়ে 40 সেকেন্ড। একটু পরেই সকাল 6:00 সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে দিল্লি কেন্দ্রের সংবাদ, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের পরবর্তী ঘোষণা কিছুক্ষণের মধ্যেই।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মনোজ। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के

लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अगस्त्य मुनि के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण। उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उन्हें भक्ति, वैराग्य अथवा ज्ञान कुछ भी प्राप्त है। चित्रकूट से पंचवटी जाते हुए श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के दर्शन जब मुनि सुतीक्ष्ण को प्राप्त हुए तो अपने आश्रम में ले आकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की, फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था कि वे किस प्रकार प्रभु की विनती करें। नील कमल के समान श्री राम का शरीर है, जिस पर मुनियों जैसा वेश और सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है। सुतीक्ष्ण की कामना है कि मोह रूपी वन को भस्म करने वाली आग तथा संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान प्रभु सदा मुनिगण की रक्षा करें। संशय रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए प्रभु गरुड़ हैं। अत्यंत कठोर तर्क से उपजने वाले विषाद का वो परिष्कार करते हैं। यद्यपि उनका निर्मल, व्यापक तथा अविनाशी रूप भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है, फिर भी मुनि सुतीक्ष्ण प्रभु के वनवासी रूप को ही अपने हृदय में बसाना चाहते हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। षोडशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सितम्बर मासस्य 28-29 दिनाङ्कयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलङ्घ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्प्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायुप्रहारस्य अथ सिन्दूराभियानस्य आधारशिलाम् अरचयत्।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत यत् शल्य प्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः 28-29 सितंबर मासे दिल्ल्यां सम्भूतान् श्रृंखलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुंबय्याः 26-11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमंत्री स्पष्टम् उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट

0: यूरिया लगाने का निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके जरिए बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनहत सिंह को रजत पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. India marks 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28, 29, 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control LOC in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. The government noted that the resolve shown in 2016 laid the groundwork for subsequent bold actions, including the 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025. In his Mann Ki Baat program on Akashwani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the LOC. Mr. Modi recalled how the world was astonished by the manner in which Indian soldiers crossed the LOC to take action against terrorism. Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade, citing the Balakot airstrike and Operation Sindoor as examples.
2: LOC ke us paar jaakar hamare veer jawanon ne jis tarah aatankwad ke khilaf karwai ki thi wo dekh duniya hairan thi. Surgical strike ne dhanke ki chot par puri duniya ke samne Bharat ki aatankwad virodhi niti ka ek naya udaharan prastut kiya tha. आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
1: The proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association, AIBEA. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, IBA. In a social media post, the IABA said that this decision was taken after a meeting held between the Indian Bank

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230

0: करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
0: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
2: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
0: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत

0: डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather Department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Thiruvananthapuram. And now the news in detail. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the line of control.
3: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
2: The Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade, citing the Balakot airstrike and Operation Sindoor as examples. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to activist Ashok Singhal. In an article for an English daily, Mr. Modi said, Ashok Singhal's life reflected a cherished ethos. The pursuit of others' welfare acquires far greater meaning than individual achievement. Mr. Modi said that starting from yesterday, the nation marks to celebrate the birth centenary of the outstanding

297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर दोस्तों यह है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। स्टूडियो घड़ी बच्चों के हैं 9:10 और आपका दोस्त अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके रसधारा। दोस्तों रसधारा कार्यक्रम में मैं रहने वाला हूं 10 बजे तक आपके साथ और जब भी हम आते हैं इस कार्यक्रम में लाते हैं एक विषय, करते हैं बात उसी विषय पर। दोस्तों आज का हमारा विषय है रेबीज एक गंभीर बीमारी, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार। जी हाँ दोस्तों आज पूरे कार्यक्रम में चर्चा करूंगा इसी विषय पर। रेबीज एक गंभीर वायरल संक्रमण है जो आवारा जानवर के काटने या खरोचने तथा पेट में लगने वाले सभी इंजेक्शनों से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर जब तक लक्षण प्रकट होते हैं तब तक संक्रमित व्यक्ति को बचाना बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि रेबीज से पीड़ित व्यक्ति का आमतौर पर प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है अगर वह तुरंत मदद मांगे।

कैलाश खेर की आवाज में दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत। संगीत से सजाया था विशाल शेखर ने, बोल से सवारा था विशाल ने। रेबीज जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, एक तीव्र वायरल संक्रमण है जो लगभग हमेशा घातक होता है। यह संक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है और खेत या जंगली जानवरों द्वारा फैलता है। आमतौर पर कुत्ते, बिल्ली, सियार, रेकुन जैसे मांसाहारी जानवर, ये ज्यादातर अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, ताइवान, जापान और साइप्रस जैसे द्वीपों में रेबीज नहीं होता है। इसे जूनोटिक रोग, यानी जूनोटिक का मतलब जानवर से संबंधित, के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

फिल्म चिल्लर पार्टी से दोस्तों अमित त्रिवेदी और जयश्री त्रिवेदी लेकर आए थे ये गीत। अमित त्रिवेदी का संगीत, नितेश तिवारी अमित त्रिवेदी की बोल। मनुष्य को रेबीज एक पागल जानवर के काटने के कारण होता है। वायरस जानवर की लार के माध्यम से फैलता है। कुत्ते, गाय, घोड़े, बकरी, खरगोश जैसे खेत के जानवर और सियार, चमगादड़, कोयोट, लोमड़ी और लकड़बग्गा जैसे जंगली जानवर अगर संक्रमित हो तो रेबीज फैल सकता है। भारत में आवारा कुत्ते संक्रमण का सबसे संभावित स्रोत है, क्योंकि पालतू जानवरों को टीका लगाया जाता है। प्रयोगशाला में रेबीज वायरस का उपचार करना, ऐसी गुफाओं का खोज करना जहां चमगादड़ हो सकते हैं, या जंगल में डेरा लगा डालना जहां जंगली जानवर मौजूद हो, ऐसी सामान्य परिस्थिति है जिनमें किसी पागल जानवर द्वारा काटा जाता है। मनुष्य से मनुष्य से संक्रमण का कोई दस्तावेज नहीं है। यदि कोई पागल जानवर किसी व्यक्ति के खुले घाव को चाटता है तो वायरस फैल सकता है। सिर और गर्दन के घाव ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि संक्रमण मस्तिष्क तक तेजी से पहुंच सकता है।

फिल्म त्रिदेव से दोस्तों अलका याग्निक मनहर उदास की आवाज में आप सुन रहे थे गीत कल्याण जी आनंद जी का संगीत आनंद बख्शी के बोल। रेबीज के लक्षण और संकेत रोग के अंतिम चरण तक प्रकट नहीं होते, तब तक वायरस मस्तिष्क तक फैल चुका होता है। इंसेफ्लाइटिस और शीघ्र ही मृत्यु हो गई। रेबीज का एक उष्मानीय काल होता है जिसका अर्थ है कि लक्षण और संकेत प्रकट होने से पहले ये व्यक्ति के शरीर में कुछ दिनों तक निष्क्रिय रहता है। शुरुआती लक्षण है सिर दर्द, गले में दर्द, बुखार और काटने वाली स्थान पर झुनझुनी, अत्यधिक लार लाना, निकलने में कठिनाई, निकलने में कठिनाई के कारण पानी से डरना, चिंता, भ्रम जैसे लक्षण, अनिद्रा, यहाँ तक कि आशंक, पक्षाघात और कभी कभी कोमा भी रेबीज का संकेत देता है। व्यक्ति को ध्वनि, प्रकाश और यहाँ तक कि ठंडी हवा का भी अनुभव नहीं होता। हवा से डर, एरोफोबिया देखा जाता है।

फिल्म धड़क से दोस्तों आप सुन रहे थे अजय अतुल की आवाज में ये संगीत। संगीत से सजाया था खुद अजय अतुल ने, बोल से सवारा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। आइए दोस्तों एक जरूरी सूचना दूं आपको। 138वीं डाक अदालत एवं पिंशन अदालत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में 28/10/2026 को अपराह 12:30 मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों के पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्व ब्यौरा का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायतकर्ता श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी CPMG_WB

adpgcowb@indiapost.gov.in, adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संचार 0332212052 0332212062 0332212062 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदन ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामले एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधीक्षक आरएमएस एसवी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसवी मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक आरएमएस एसवी मंडल कार्यालय 2MG रोड हावड़ा 4 मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111101 में गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएस एसवी मंडल से संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेज सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल rmssbdn@gmail.com ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें के माध्यम से अधीक्षक आरएमएस एसवी मंडल हावड़ा 7111 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहक शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हो। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या 0332641595 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस फीसी का लिंक यथा समय साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामले से उत्तराधिकार आदि और नीतिगत मामलों में संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी जरूरी सूचना। अभी वक्त हो गया है 9:36। आपका दोस्त अंकित आपके साथ, कार्यक्रम चल रहा है रसधारा आपके अपने चैनल पर यानी आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता पर। और दोस्तों आज रसधारा कार्यक्रम में मैं बात कर रहा हूँ रेबीज, एक गंभीर बीमारी, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार। रहने वाला हूँ इस कार्यक्रम में 10 बजे तक आपके साथ। और आप हमारे ये कार्यक्रम सुन रहे हैं 297.6 मीटर अर्थात 1008 में पर और न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप पर भी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको किसी आवारा कुत्ते या जंगली जानवर ने काट लिया है तो यह मान लेना समझदारी है कि जानवर को रेबीज है और व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए तुरंत टीका लगवाना लेना चाहिए। अगर जानवर पालतू है तो मालिक या पशु चिकित्सक से यह सत्यापित किया जा सकता है कि जानवर रेबीज से ग्रस्त नहीं है, तो केवल इन मामलों में ही व्यक्ति को टीका नहीं लगवाना चाहिए। किसी व्यक्ति को काटने के बाद जानवर को सुरक्षित करना या पकड़ना अत्यंत सहायक होता है, क्योंकि जानवर को स्थानीय एजेंसी को सौंपा जा सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे रेबीज है या नहीं। आपको डॉक्टर आपसे जानवर के व्यवहार के बारे में पूछेगा, क्या वह दोस्ताना था या गुस्से में था, क्योंकि जंगली जानवरों का इंसानों के प्रति दोस्ताना व्यवहार होना की संभावना नहीं होती। वह ये भी पता लगाएगा कि आपको जानवर ने कैसे काटा और जानवर के साथ क्या हुआ, क्या वो भाग गया या उसे पकड़ लिया गया। अगर जानवर को पकड़ लिया जाता है तो उसमें रेबीज के लक्षण की जांच की जा सकती है और अगर वह स्वस्थ पाया जाता है तो पीड़ित को टीकाकरण से बचाया जा सकता है।

फिल्म भाग मिल्खा भाग से दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में। रेबीज एंटीजन का पता इम्यूनोफ्लोरेसेंस नामक विधि से लगाया जा सकता है, जिसमें त्वचा से एक छोटा उतक लिया जाता है। संक्रमित रोगी के लार से वायरस को अलग किया जा सकता है।

दोस्तों आप सुन रहे थे एक बहुत ही बेहतरीन गीत अमर अर्शी बादशाह और नेहा कक्कड़ की आवाज में। अगर कोई जानवर आपको काटता है तो घाव हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर या नजदीकी क्लिनिक पर जाएं। घाव और उसके आसपास के क्षेत्र को तुरंत साबुन और पानी से धोएं। अगर जानवर को रेबीज होने का पता है तो तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं है कि जानवर रेबीज है या नहीं तो वैक्सीन लगवाना बेहतर है। अगर जानवर पालतू या खेत का जानवर है तो उसे करीब 10 दिनों तक निगरानी में रखा जा सकता है ताकि पता चल सके कि उसे रेबीज है या नहीं। अगर जानवर स्वस्थ है और उसमें रेबीज के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं तो इंजेक्शन की जरूरत नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य से रेबीज के लिए कोई विशिष्ट उपचार मौजूद नहीं है। रेबीज आमतौर पर घातक होता है और इससे शायद ही कोई बच पाता है।

शान और आमिर खान की आवाज़ में दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत, संगीत से सजाया था दोस्तों शंकर एहसान लॉय ने फिल्म तारे जमीन पर से। देखते ही देखते दोस्तों हम पहुंच चुके हमारे कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर, और रेबीज इम्यून ग्लोब्यूलिन ये एक तेजी से काम करने वाला इंजेक्शन है जो वायरस को व्यक्ति को संक्रमित करने से रोकता है। अधिकतम प्रभाव के लिए इसे जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। 14 दिनों में 12 से 5 इंजेक्शन, बांह में 5 इंजेक्शन की एक श्रृंखला दी जाती है। पालतू जानवरों को नियमित रूप से टीका लगवाने तथा पड़ोसियों और मित्रों को भी ऐसा करने के लिए शिक्षित करें। यदि आप किसी ऐसे स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहां रेबीज एक स्वास्थ्य समस्या है तो अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या आपको टीका लगवाना चाहिए। खरगोशों और बिल्लियों जैसे छोटे पालतू जानवरों को सीमित रखें और उन्हें कभी भी बड़ी या जंगली जानवरों के बीच न रखें क्योंकि इन पालतू जानवरों का टीकाकरण नहीं किया जा सकता है। अपने पालतू जानवरों को कभी भी जंगल या वन क्षेत्र में ना घुमाएं। अपने घर में चमगादड़ को दूर रखें। अगर कोई चमगादड़ घर में घुस आए तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकालें। यदि आप अपने क्षेत्र में कोई जंगली या आवारा जानवर देखते हैं तो स्थानीय प्राधिकारियों को सूचित करें। और दोस्तों अब हम बढ़ेंगे हमारे कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ, और इसी गीत के साथ आपको दोस्त अंकित लेकर इजाजत, मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं ठीक 12 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, और अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में होगा आप लोगों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री ने भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का अतुलनीय योगदान युगों तक स्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में 179 ट्रैकर्स पर्वतारोहियों और उनके सहयोगी कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

लोग उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में 13 अलग अलग ट्रैकिंग दलों में फंसे हुए हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: হতে পারে বলে আবহাওয়া বিজ্ঞানী সরিষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।
1: দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী এক সপ্তাহ প্রধানত বিক্ষিপ্তভাবে বা স্থানীয়ভাবে হালকা ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য আগামী এক সপ্তাহ বিক্ষিপ্তভাবে বা স্থানীয়ভাবে হালকা ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমের দিকে থাকবে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, স্থানীয়ভাবে দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া আগামী এক সপ্তাহ বৃষ্টিপাত উত্তরবঙ্গের জন্য কমের দিকেই থাকবে।
0: টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে বাঁকুড়ার বিভিন্ন এলাকা বিপর্যস্ত, একাধিক জায়গায় কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর মিলেছে। এদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল পৌরসভার 17টি ওয়ার্ডের মধ্যে 13টি জলমগ্ন, নৌকো ও ডিঙিতে চলছে যাতায়াত। স্থানীয় সংবাদ শেষ হলো।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल संचेता, मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 10:15 और 37 सेकंड हो रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल संचेता पर आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, और मैं हूँ आपकी हरदिल अजीज दोस्त शाइस्ता नाज। आप सभी सामीन को मेरा प्यार भरा आदाब। सामीन, सबसे पहले पेश है आईना में सबसे पहले आज पेश करती हूँ आलमी यौम इंसदाद रबीज यानि वर्ल्ड रबीज डे। दोस्तों, आज 28 सितंबर है और पूरी दुनिया में ये आलमी यौम इंसदाद रबीज़ के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का बुनियादी मकसद रबीज़ के बारे में अवामी शऊर बेदार करना है, इस ख़तरनाक बीमारी से बचाव के तरीके से आगाह करना और जानवरों की वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर करना है। रबीज़ एक ख़तरनाक वायरल बीमारी है जो मुतासरा जानवर के लुआब के ज़रिए इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। आम तौर पर मुतासरा के कुत्ते का काटना इसकी मुंतकली का अहम ज़रिया रहता है। ताहम बिल्ली, बंदर और दीगर जानवर भी रबीज़ का सबब बन सकते हैं। जानवर के काटने के बाद घबराने के बजाय फौरन और दुरुस्त कदम उठाना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले ज़ख्म को साबुन और बहते हुए पानी से तकरीबन 15 मिनट तक अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके बाद ज़ख्म पर किसी घरेलू या रिवायती चीज़ का लेप लगाने के बजाय फौरी तिब्बी मरकज़ से राब्ता करना चाहिए। डॉक्टर सूरत हाल के मुताबिक रबीज़ से बचाव की वैक्सीन और ज़रूरत पड़ने पर दीगर ज़रूरी इलाज तजवीज़ कर सकते हैं। इलाज में ताखीर ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसलिए जानवर को काटने को मामूली समझ कर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रबीज से बचाव सिर्फ इंसानों के इलाज तक महदूद नहीं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए कुत्तों और दीगर पालतू जानवरों की बरवक्त वैक्सीनेशन भी बहुत अहम है। जानवरों के साथ जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना और आवारा या जानवरों से मुनासिब फासला रखना भी एहतियात का हिस्सा है। बच्चों को ख़ास तौर पर यह सिखाना चाहिए कि वो अजनबी या आवारा जानवरों को छेड़े नहीं, उन्हें खाना खिलाने वक्त एहतियात करें और किसी जानवर के काटने या नोचने की सूरत में फौरन किसी बड़े को इतला दें। सामीन, आलमी यौम इंसदाद रबीज़ हमें ये पैगाम देता है कि रबीज़ से बचाना बचाव मुमकिन है, लेकिन इसके लिए बरवक्त एहतियात और तिबी इकदाम ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, अब हम ये ख्याल रखें कि रबीज़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, अपने घर के पालतू जानवरों की वैक्सीनेशन का ख्याल रखेंगे और दूसरों को भी इस ख़तरनाक बीमारी से बचाव के तरीके से आगाह करेंगे। जानवरों से मोहब्बत ज़रूर कीजिए मगर एहतियात के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के मौजू पर, यानि आलमी यौम मालूमात तक आलमगीर रसाई। कहते हैं कि मालूमात ताकत है और आज के दौर में दुरुस्त और बरवक्त मालूमात तक रसाई हर फर्द की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। तालीम हो, सेहत हो, रोज़गार हो, सरकारी सहूलियात हो या अपने हकूक़ से आगाही, सही मालूमात इंसान को बेहतर फैसले करने के काबिल बनाती है। इस अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल 28 सितंबर को आलमी यौम मालूमात तक आलमगीर रसाई मनाया जाता है। इस दिन का बुनियादी मकसद यह एहसास उजागर करना है कि हर शख्स को मालूमात हासिल करने, उसे समझने और उससे फ़ायदा उठाने के मौके मुयसर होने चाहिए। एक बाखबर शहरी अपने हकूक़ और जिम्मेदारियों से ज़्यादा बेहतर तौर पर वाकिफ़ होता है। इसे मालूम होता है कि सरकारी स्कीमों से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। تعلیم اور صحت سے متعلق سہولیات کہاں دستیاب ہیں اور کسی مسئلے کی

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा। दोस्तों वक्त हो चला है अगले प्रोग्राम का, तो चलिए सुनते हैं हफ्तरोज़ा प्रोग्राम सुहाना सफ़र। सुहाना सफ़र ये आपका पसंदीदा हफ्तरोज़ा प्रोग्राम है, जहां हम हर हफ्ते आपको ले चलते हैं हिंदुस्तान के किसी ऐसे खूबसूरत मकाम की तरफ, जहां पहुंचकर दिल कहता है काश ये सफ़र थोड़ा और लंबा होता। आपकी चारों तरफ सब्ज पहाड़ हैं, फिजाओं में बादल तैर रहे हैं, कहीं आबशारों का शोर है, कहीं परिंदों की आवाज़ें, और कभी अचानक बादल आपके इतने करीब आ जाते हैं कि लगता है जैसे आसमान ज़मीन से मिलने आया हो। जी हाँ, आज का हमारा सफ़र है मेघालय का, यानी बादलों का घर। मेघालय शुमाल मशरकी हिंदुस्तान की एक हसीन रियासत है, जिसका नाम ही संस्कृत के दो अल्फाज मेघ और आलिया से मिलकर बने हैं, यानी बादलों का घर। और यकीन जानिए, यहाँ कुदरत ने सब्ज रंग के इतने शेड्स बिखेरे हैं कि शायद पेंटर भी सोच में पड़ जाए कि आखिर कौन सा सब्ज रंग इस्तेमाल किया जाए। मेघालय के सफ़र का आगाज़ है हमार शिलोंग का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिलोंग रियासत का दारुल हुकूमत है और अपने खूबसूरत पहाड़ों, ठंडी हवाओं, आबशारों और दिलकश मंजर के बास सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ की सड़कों पर सफ़र करते हुए कभी पहाड़ साथ साथ चलते महसूस होते हैं, तो कभी बादल गाड़ी की खिड़की से झांकते दिखाई देते हैं, और अगर मौसम तरह ज़रा मेहरबान हो तो मंज़र कुछ ऐसा होता है जैसे किसी फिल्म की लोकेशन हो। हल्की बारिश और परिंदों की आवाज़ कितना खूबसूरत नज़र आता है। ज़रा सोचिए, खिड़की के शीशे पर बारिश के खतरे, सामने धुंध में लिपटे पहाड़, हाथ में गर्म चाय, बस फिर क्या है, सफ़र सुहाना ना हो तो और क्या हो। अब चलते हैं सोहरा यानी चेरापूंजी की तरफ। बारिश के हवाले से मेघालय का नाम दुनिया भर में मशहूर है। चेरापूंजी के इर्द गिर्द फैले सब्ज पहाड़ गहरी वादियां, गारें और आबशारें इस इलाके को बेहद दिलकश बना देते हैं। यहाँ बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। बारिश आती है तो आबशारें जैसे जाग उठती हैं, पहाड़ धुलकर मजीद सब्ज हो जाते हैं और पूरी वादी एक ताज़ा तस्वीर की तरह नजर आने लगती है। और शायद इसलिए मेघालय के सफ़र में छतरी सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि एक मुस्तकिल सफरी साथी बन जाती है। तो अगर आप कभी मेघालय जाएं तो छतरी साथ रखिएगा, क्योंकि यहाँ बादलों का कोई भरोसा नहीं, कब आपसे मिलने आ जाए पता नहीं चलता। सामीन, आप ज़रा मेघालय के एक ऐसे हैरतअंगेज तोहफे की तरफ चलते हैं जिसे देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कुदरत और इंसान मिलकर क्या कुछ तख्लीक कर सकते हैं। ये है लिविंग रूट ब्रिजेस, यानी जिंदा जड़ों से बने पुल। मेघालय के बाज़ इलाकों में मकामी लोगों ने के दरख्तों के जड़ों को मखसूस अंदाज में बढ़ाकर ऐसे पुल तैयार किए जो वक्त के साथ मजीद मजबूत होते जाते हैं। यानी यहाँ पुल सिर्फ बनाए नहीं जाते बल्कि उगाया भी जाता है उन्हें। कितनी खूबसूरत बात है ना, इंसान ने कुदरत को शिकस्त देने के बजाय कुदरत के साथ मिलकर रास्ता बनाया। अब रुख करते हैं डाक की जानिब। यहाँ दरिया का शफाफ पानी सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जह करता है। साफ मौसम में दरिया का पानी इतना शफाफ दिखाई देता है कि कश्ती पानी पर नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए महसूस होती है, और यही वो मंजर है जहाँ कैमरा भी शायद कहता हो भाई मेरी जितनी मेमोरी है सब इस्तेमाल कर लो, ये मंजर छोड़ना नहीं। यहाँ कश्ती रानी का तजर्बा सफ़र को मज़ीद यादगार बना देता है। मेघालय के एक और दिलकश मुकाम है जो अपनी सफाई, दरियाई और कुदरती

दोस्तों अब पेश है ये नगमा। अभी आप समाज फरमा रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, ये नगमा अब पेश है आपकी समातों के हवाले करती हूँ ये खूबसूरत सा नगमा।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और कुमार शानू आरडी बर्मन की आवाज़ में ये नगमा। दोस्तों पेश है अगला प्रोग्राम, आप सुनते रहिए अगला प्रोग्राम। अपने दोस्त शायस्ता को दीजिए इजाज़त, आदाब।

स्टूडियो घड़ी बज चुके हैं 2:12 और मैं आज का दोस्त आपका अंकित हाजिर हूं कार्यक्रम लेके सुरभि। और दोस्तों सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले चर्चा है और आज चर्चा में दोस्तों हम बात करेंगे वर्ल्ड रेबीज डे के बारे में।

रेबीज एक रोकथाम योग्य बीमारी है, लेकिन हर साल लगभग 59,000 लोग रेबीज से मर जाते हैं। पालतू जानवरों और समुदायों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रेबीज और आदर्श प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। ये सकारात्मक परिवर्तन और बेहतर शिक्षा के लिए माध्यम से कुत्तों से होने वाले रेबीज को शून्य तक लाने के लिए एकजुट होने का संदेश है, ताकि 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। रेबीज एक जानलेवा वायरल संक्रमण है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। जानवरों के काटने या खरोचने से ये बीमारी दूसरे जानवरों या इंसानों में फैल सकती है। रेबीज का वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है, और यही समय पर उचित चिकित्सा देखभाल न मिलने पर यह बीमारी मस्तिष्क क्षति और मृत्यु का कारण बन सकती है। रेबीज के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन और चिंता, भ्रम, अतिसक्रिय, निगलने में कठिनाई, अत्यधिक लार आना, मति भ्रम, अनिद्रा या आंशिक पक्षाघात शामिल हो सकते हैं। रेबीज वायरस संक्रमित जानवर की लार या मस्तिष्क तंत्रिका उत्तक के सीधे संपर्क से फैलता है। आमतौर पर यह संक्रमण काटने, खरोचने या लार के संपर्क में आने वाले खुले घावों के माध्यम से होता है। रेबीज वायरस सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने या सूखने पर संक्रामक नहीं हो जाता। अगर आप किसी अनजान जानवर, चमगादड़ या कुत्ते के संपर्क में आए हैं या उन्हें आपको काटा है, तो बेहतर होगा कि आप रोग निरोध टीका लगवाएं। काटते ही उस जगह को साबुन और पानी से धो लें। आपका डॉक्टर घाव की जांच भी कर सकता है और घाव से संक्रमण की संभावना को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी लिख सकता है। लगभग सभी स्तनधारी रेबीज से संक्रमित होने के संभावित कारण हैं। कुछ सामान्य जानवरों में कुत्तों, चमगादड़, रैकून और लोमड़ी शामिल है। यहाँ तक कि जिन पशुओं का टीकाकरण नहीं हुआ है, वे भी आवारा जानवरों के काटने से रेबीज के प्रति संदेश संवेदनशील हो सकते हैं। यदि कोई जानवर सामान्य रूप से बीमार हो, निगलने में समस्या हो, अत्यधिक लार टपकती हो और अत्यधिक आक्रामक हो, तो उसे रेबीज होने का संदेह होना चाहिए। कुछ जानवर सामान्य से अधिक शांत दिख सकते हैं और लकवाग्रस्त भी हो सकते हैं। जमीन पर लेटे हुए चमगादड़ से बचना चाहिए। पालतू जानवरों के लिए, अपने पालतू जानवरों को नियमित स्वास्थ्य जांच पशु चिकित्सक से करवाएं और सुझाए गए टीके लगवाएं। पालतू जानवरों को निगरानी वाले क्षेत्रों में, ये ऐसे क्षेत्रों में रखें, प्रयास करें जहां आप जानते हो कि वे आवारे जंगली जानवरों के संपर्क में नहीं आते। आवारे या अवांछित पशुओं को देखभाल की जानी चाहिए या अभियान चलाकर उनका टीकाकरण किया जाना चाहिए। वन्य जीवों से दूर रहने की कोशिश करें। चमगादड़ों से भी रेबीज के खतरे के बारे में जाने जानवरों के काटने पर तुरंत साबुन और पानी से धोएं। यदि आपको किसी जानवर ने काट लिया है या खरोच दिया है, तो रोग निरोध या निवारक टीका लगवाएं। अगर आपको पहले रेबीज का टीका नहीं लगा है, तो काटने के बाद आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की एक खुराक लेने की सलाह दी सकती है, जिसमें काटने वाले दिन वैक्सीन और ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की एक खुराक और उसके बाद 3rd, 7th, और 14th दिन वैक्सीन की एक खुराक शामिल है। अगर किसी को पहले से ही रेबीज का टीका लग चुका है, तो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन की जरूरत नहीं है। अब बढ़ेंगे दोस्तों कार्यक्रम के अगले विषय पर, वो होगा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह, उनका जन्म हुआ था दोस्तों 27 सितंबर 1907 में। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनको दो अन्य साथी राजगुरु सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 अश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन उनके साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। इनकी जन्मभूमि बंगा गांव पश्चिमी पंजाब में है, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। ये किसान परिवार से थे। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी

के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। वर्ष 1922 में चोरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। इसके बाद वे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 5 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्गीन हो गए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सहायक पुलिस के अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथ बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत के तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वह वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उनकी सूचना मिलते ही भगत सिंह ने अपने स्कूल में 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वे भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश के स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में से चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 5 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंह इनके अधिक उद्गीन हुए। उनके अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम ही दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। साइमन कमीशन के बहिष्कार के भयानक प्रदर्शन में प्रदर्शन के भाग लेने वाले पर अंग्रेज शासन ने लाठी चार्ज भी किया। इसी लाठी चार्ज ने आहत लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनमें इनसे ना रहा गया। एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। इधर चंद्रशेखर आजाद पास के DAV स्कूल के चार दीवार के पास छिपकर घटना को अंजाम देने लगे और करीब 4:15 बजे SOP सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर पर मारी जिससे वह पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली दाग कर उसके मरने के पूरा इंतजाम कर दिया। इधर जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चैन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी और वह वहीं पर मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे। तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे, कालांतर ने उनके विरोधी द्वारा उनको अपने विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप लगते रहे। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिला पाए क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते थे। उन्हें पूंजीपतियों को मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वसेवा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों की मजदूरों के प्रति अत्याचार ने उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद ने पारित न होने देना उनके दल का निर्माण था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्हें दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी।

भगत सिंह चाहते थे कि इनमें कोई खून खराब ना हो और अंग्रेजी तक उनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद ना था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हाल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते थे तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो, अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज तथा निक्कर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख वे सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपंतियों को अपने शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूरों को शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजों में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूं। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने कई दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल से अपने प्राण ही त्याग दिए थे। छब्बीस अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 एफ तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठ का निर्णय दिया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रिवी परिषद ने अपील दायर की गई, परंतु ये अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वे अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ करते। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाते हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। ये सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने के पहले ही लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उसने उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया तो उन्होंने कहा था कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर एक मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीन मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरे में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गाँव के लोग ने आग जलती देख तो करीब आए, इसमें डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अजले टुकड़े को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने उनके मृत शरीर के टुकड़े को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं, चर्चा है कि अगले विषय पर बात करेंगे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर का जन्म हुआ था दोस्तों 28 सितंबर 1929 में। एक भारतीय पार्श्वगायिका गायिका और कभी कभी संगीतकारक भारतीय उपमहाद्वीपी की सबसे महान और प्रभावशाली गायिकाओं में से एक माना जाता है। 8 दशकों तक फैले अपने करियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनकी योगदान ने उन्हें धुन की रानी और

वादी की आवाज जैसे सम्मानजनक खिताब दिलाए। मंगेशकर ने 36 से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए, हालांकि मुख्य रूप से हिंदुस्तानी, बंगाली और मराठी में। अपनी अनुशासनशीलता के लिए जाने जाने वाली मंगेशकर हमेशा नंगे पैर अपने गाने रिकॉर्ड करती थी, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के प्रति सम्मान का प्रतीक था, जिसे वह एक मंदिर मानती थी। अपने पूर्णतावाद के बावजूद वह मशहूर तौर पर रिलीज होने के बाद अपने गाने कभी नहीं सुनती थी और इंटरव्यू में कहती थी कि उन्हें अपने गायन में केवल गलतियां ही मिलेगी। उन्होंने अपने पूरे करियर में प्रशंसा और सम्मान प्राप्त किए। 1989 में भारत सरकार द्वारा उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिससे वे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली दूसरी गायिका बन गई। 2009 में फ्रांस ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर की अधिकारी बनाया। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वर गायिका पुरस्कार। बाद में उन्होंने कई और पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। 1974 में वह लंदन इंग्लैंड के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय पार्श्व गायिका बनी। तो दोस्तों, ये तो थी चर्चा है लता मंगेशकर के ऊपर। अब बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। सुरभि के अंतर्गत बात करेंगे पहल में, और पहल में आज बात करेंगे दोस्तों हम पीएम उज्ज्वल योजना के बारे में। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना ने। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से गरीब महिलाओं को जल्दी ही मिट्टी के चूल्हे से आजादी मिल जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन को जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 8,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। नारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। सरकार ने ईंधन के दाम बढ़ने पर मई 2022 में उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी प्रदान की। अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित एलपीजी की कीमतों को कम करने का निर्णय व्यक्तियों पर वित्तीय तनाव को कम करने और उनके कल्याण को बढ़ावा के लिए निरंतर प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कटौती आवश्यक वस्तुओं को किफायती दरों पर अधिक सुलभ बनाकर हमारे नागरिकों को कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रति हमारे अटूट समर्पण को रेखांकित करती है। उज्ज्वल योजना में रसोई गैस प्राप्त करने के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आपके पास बीपीएल गरीब रेखा का कार्ड होना चाहिए। आवश्यकता के इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन चाहते हैं, इन्हें योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी एलपीजी वितरण केंद्र में जमा कराना होगा। 2 पन्ने के आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरकर, जैसे आपका नाम, पता, आधार नंबर तथा जनधन बैंक खाता नंबर भरकर वितरण केंद्र पर जमा करवाना होगा। सभी जानकारी सही सही दर्ज करने के बाद आप इसे जमा कर देंगे, जिसके बाद आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी तथा अन्य दस्तावेजों को जांच करके आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्रदान कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो था हमारा कार्यक्रम। इसी के साथ अब मैं आपको दोस्तों की ले लूंगा इजाजत, मिलूंगा फिर आपसे कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए नमस्कार, और अगला कार्यक्रम होगा दोस्तों थोड़ी देर में आप लोगों के लिए। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली NCR क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर व्यक्ति से व्यापारी UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के UPI भुगतान पर MDR लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़क कर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Noon session today. The Sensex tumbled nearly 1,000 points, falling below the 73,000 mark. The Nifty shed 306 points to 22,835 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index cracked 1.4% and the small-cap 100 index slid 1.6% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay the centre's decision to impose merchant discount rate on UPI transactions. Proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Nation remembers freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. Sensex plunges nearly 1,000 points amid surge in crude oil prices. Nifty tanks 306 points. And in Asian Games, India bagged silver and bronze medals today in women's 25-meter pistol and under 78-kilogram kurash events. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली तीन दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली तीन दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
1: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो

0: के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई, खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे, ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बबदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
4: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
4: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
3: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिला

0: के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
1: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
2: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
1: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
4: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, पर कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
5: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता

0: और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন শরৎবাদন, শিল্পী রাজীব চক্রবর্তী, রাগ বৃন্দাবনী সারং, শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন আশির জানা।

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্জ মিডিয়াম ওয়েভে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন 4:59 হয়ে 46 সেকেন্ড। এখন খবর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে জয়া ভারতী। ভারত নে ইস বর্ষ বস্তুও ও সেবাও কে কুল নিরাত কো পিছলে বর্ষ কে 863 অরব ডলার সে বড়াকর 1 ট্রিলিয়ন ডলার করনে কা মহত্বাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য রাখা হ্যায়। বাণিজ্য আর উদ্যোগ মন্ত্রী পীয়ূষ গোয়েল নে কহা কি বৈশ্বিক চুনৌতিও কে বাওজুদ চালু বিত্ত বর্ষ কে পহলে 6 মহিনো মে বস্তুও কে নিরাত মে 15% সে অধিক কি বৃদ্ধি হুই হ্যায়। মুম্বাই মে ভারত আর সংযুক্ত আরব আমিরাত উচ্চস্তরীয় সংযুক্ত কার্যবল কি 14ভি বৈঠক কে বাদ সংবাদদাতাও সে বাতচিত মে श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बाद दोनों देशों का व्यापार करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि यूएई ने भारत में अब तक लगभग 25 अरब डॉलर का निवेश किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी रूप से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर मांडविया ने सभी हितधारकों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सम्मेलन कल से 1 अक्टूबर तक नौसेना भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह नौसेना का सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: दिल्ली सरकार ने

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी पूनम के संग। उर्वशी के अंतर्गत झरोखा और झरोखा के अंतर्गत आज मैं बात करने वाली हूं पोर गीत के बारे में। बोर गीत असमिया संस्कृति और संगीत की एक अनमोल थाती है, जिसे असम के महान संत, समाज सुधारक और वैष्णव गुरु महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और उनके प्रिय शिष्य महापुरुष माधवदेव ने 15वीं और 16वीं शताब्दी में रचा था। और भी बातें हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई। और आज उर्वशी के अंतर्गत झरोखा और झरोखा के अंतर्गत मैं बात कर रही हूँ बोरगीत के बारे में। बोरगीत शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ गीत होता है। ये गीत भक्ति रस से ओतप्रोत होते हैं और इनमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा, उनकी लीलाओं और मानव जीवन की नश्वरता का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। फिलहाल 5:27 और वक्त एक और खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में फिल्म महल से आपने ये खूबसूरत सा नगमा सुना। और आज झरोखा के अंतर्गत बातें हो रही हैं बोर गीत के बारे में। इन गीतों की भाषा ब्रजावली है, जो असमिया और मैथिली का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। बोर गीतों की सबसे बड़ी जो विशेषता है ना, वो है उनकी शास्त्रीय राग रागनियां और ताल संरचना, जो इन्हें दूसरे लोक गीतों से अलग और विशिष्ट बनाती हैं। इन्हें आमतौर पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे खोल, एक प्रकार का ताल वाद्यों द्वारा ढोल और ताल मंजीरा की संगत के साथ गाया जाता है। बातें और भी हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

5:46। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, आवाज आशा भोसले की और फिल्म का नाम शिकार। और आज झरोखा के अंतर्गत बातें हो रही हैं बोर गीत के बारे में। असमिया समाज और विशेषकर सत्र संस्कृति में बोर गीतों का बहुत ऊंचा स्थान है। ये गीत केवल धार्मिक भजन नहीं है बल्कि असमिया पहचान, आध्यात्मिकता और शास्त्रीय संगीत की गहरी नींव है जो आज भी असम के जनजीवन में पूरी तरह रचे बसे हैं।

5:51 और थोड़ी देर के लिए दीजिए पूनम को आज्ञा, लौट कर फिर आऊंगी आप सबके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम हिंदी वार्ता। वक्त होगा 6:10, तब तक के लिए आज्ञा नमस्कार।

0: You are tuned to the Sanchita channel of Akashvani Kolkata, broadcasting on 297.6 meters, that is on 1008 kilohertz medium wave. Time coming up to 1800 hours. We shall now join our studios in Delhi for the news.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलुओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस सहमति पर समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण, खाद्य सुरक्षा और जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस अंतरिक्ष साझेदारी 6 दशक से अधिक पुरानी है, जिसमें रॉकेट प्रयोगों से लेकर गगनयान और संयुक्त उपग्रह मिशन तक शामिल हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि IIM बंगलुरु, IIT कानपुर और IIT चेन्नई के अध्ययनों के आधार पर भारत की माल ढुलाई लागत में लगभग 6% की कमी आई है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत के पुरुष

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संजयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी वार्ता और आज इसके अंतर्गत मैं बात करने वाली हूं रेबीज से बचाव, जागरूकता और जिम्मेदारी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने कई असाध्य और घातक बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु आज भी कुछ ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जिनके लक्षण प्रकट होने के बाद उनका कोई प्रभावी इलाज नहीं बचता। रेबीज उन्हीं अत्यंत भयावह और शत प्रतिशत घातक विषाणु जनित बीमारियों में से एक है। इसे आम बोलचाल में जलकांटा या हड़वा भी कहा जाता है। यह बीमारी मुख्य रूप से पागल कुत्तों और अन्य संक्रमित स्तनधारी जीवों के काटने या खरोंचने से फैलती है। विडंबना यह है कि जहां एक ओर रेबीज संक्रमण होने और लक्षण दिखने के बाद मृत्यु दर लगभग 100% है, वहीं दूसरी ओर सही समय पर उठाए गए एहतियाती कदम और टीकाकरण से इसे पूरी तरह रोका भी जा सकता है। इस प्रकार रेबीज के विरुद्ध जंग में जागरूकता और व्यक्तिगत एवं सामाजिक जिम्मेदारी ही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। रेबीज क्या है और आखिर ये कैसे फैलता है? ये एक तीव्र न्यूरोट्रॉपिक वायरल बीमारी है जो लाए सिसाय वायरस परिवार के विषाणु के कारण होती है। यह वायरस मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर आक्रमण करता है। यह संक्रमण किसी संक्रमित जानवर की लार के माध्यम से फैलता है। जब कोई पागल या रेबीज से ग्रसित कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, सियार या चमगादड़ किसी इंसान को काटता है या गहरे घाव पर खरोंच मारता है तो लार सीधे रक्त प्रवाह या तंत्रिकाओं के संपर्क में आ जाती है। इसके अलावा यदि किसी संक्रमित जानवर की लार शरीर के किसी खुले घाव, कटी हुई त्वचा या आंख, नाक, मुंह जैसी नाजुक झिल्लियों के संपर्क में आ जाए तब भी यह वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। वैश्विक स्तर पर मनुष्यों में रेबीज के 99% से अधिक मामलों के लिए आवारा और पालतू कुत्ते जिम्मेदार होते हैं। विकासशील देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और कुत्तों की बड़ी संख्या के कारण ये समस्या आज भी विकराल बनी हुई है।

रेबीज का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो ये तंत्रिकाओं के सहारे बहुत धीमी गति से मस्तिष्क की ओर बढ़ता है। इस संक्रमण और लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, जो आम तौर पर 1 से 3 महीने तक होती है। हालांकि ये कुछ हफ्तों से लेकर 1 साल तक भी हो सकती है। यही कारण है कि कई बार लोग जानवर के काटने को भूल जाते हैं और बाद में बीमारी उभर आती है। लक्षण प्रकट होने पर रेबीज मुख्य रूप से 2 रूपों में सामने आता है, एक उग्र और दूसरा पैरालिटिक। उग्र रेबीज की बात करूं तो इस प्रकार से पीड़ित रोगी अत्यधिक आक्रामक, बेचैन और उत्तेजित हो जाता है। उसे भ्रम, मति भ्रम, अनिद्रा और अत्यधिक लार आने की समस्या होती है। इसका सबसे प्रमुख लक्षण हाइड्रोफोबिया यानी पानी से तीव्र डर है। पानी का नाम सुनने या देखने पर गले की मांसपेशियों में असहनीय ऐंठन होती है। पैरालिटिक रेबीज, इसमें रोगी का शरीर धीरे धीरे पक्षाघात की ओर बढ़ने लगता है। काटे गए स्थान पर सुन्नपन, कमजोरी और फिर धीरे धीरे अंगों का काम करना बंद कर देना इसके लक्षण हैं। अंततः रोगी कोमा में चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भारत और कई अन्य विकासशील देशों में रेबीज से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण उचित जानकारी का अभाव और पारंपरिक अंधविश्वास है। आज भी समाज के एक बड़े वर्ग में जानवरों के काटने पर वैज्ञानिक इलाज अपनाने के बजाय नीम हकीम नुस्खों, झाड़ फूंक, मिर्च मसाले लगाने या देसी जड़ी बूटियों का लेप करने का चलन है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि घरेलू नुस्खे या तांत्रिक उपाय रेबीज वायरस को नहीं रोक सकते। जब तक लोग इन अप्रमाणित तरीकों में उलझे रहते हैं, तब तक वायरस नसों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और उसके बाद चिकित्सा विज्ञान भी असहाय हो जाता है। इसलिए जन जन तक यह संदेश पहुंचाना अनिवार्य है कि कुत्ते या किसी भी संदेहास्पद जानवर के काटने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह ली जाए। जैसा कि कहा जाता है, इलाज से परहेज बेहतर है। रेबीज के संदर्भ में यह 100% सत्य है, क्योंकि लक्षण दिखने के बाद इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन संक्रमण रोकने के उपाय पूर्णतः सुरक्षित और प्रभावी हैं। घाव की तुरंत और सही सफाई। यदि कोई जानवर काट ले या खरोंच दे, तो सबसे पहला और जीवन रक्षक कदम यह है कि घाव को तुरंत बहते हुए साफ पानी और साबुन से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह धोएं। ऐसा करने से घाव में मौजूद अधिकांश वायरस निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर बह जाते हैं। इसके बाद पोविडोन, आयोडीन या एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। कभी भी घाव को बांधना नहीं चाहिए और ना ही उस पर मिर्च या अन्य हानिकारक पदार्थ लगाने चाहिए। घाव धोने के तुरंत बाद बिना एक भी दिन गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचना चाहिए। चिकित्सक की सलाह के अनुसार रेबीज रोधी टीके का पूरा कोर्स समय पर पूरा करना चाहिए। बचाव की शुरुआत घर से होती है। जो लोग पालतू कुत्ते, बिल्ली या अन्य जानवर पालते हैं, उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने पशुओं को नियमित रूप से रेबीज का टीका लगवाएं। रेबीज जैसी बीमारी का उन्मूलन अकेले शासन या प्रशासन के बूते संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इसके लिए पशु प्रेम बनाम सतर्कता, सामुदायिक नसबंदी और टीकाकरण अभियान, बच्चों की सुरक्षा, मृतकों के खिलाफ अभियान
जैसी बातों पर काम करने की ज़रूरत है।

0: रेबीज कोई लाइफस्टाइल बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी सामाजिक और स्वास्थ्य चुनौती है जिसमें थोड़ी सी सूझबूझ, सजगता और जिम्मेदारी से पूरी तरह निपटा जा सकता है। हर साल 28 सितंबर को मनाया जाने वाला ये दिवस, विश्व रेबीज दिवस, हमें यही संकल्प दिलाता है कि हम इस घातक बीमारी के प्रति समाज को शिक्षित करें और पशुओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वार्ता के अंतर्गत फिलहाल इतना ही।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। यूपीआई व्यवहारेषु एमडीआर शुल्क प्रवर्तनस्य केन्द्र सर्वकारस्य निर्णये सर्वोच्च न्यायालयेन स्थगनादेशः अस्वीकृतः। अद्यारभ्य प्रारभ्यमाणः त्रिदिवसीयः राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यविरामः स्थगितः। भारतेन पाकिस्तानस्थेषु आतंक्याश्रयेषु विहितस्य सर्जिकल स्ट्राइक इत्यस्य दशमी वार्षिकी आमान्यते। राष्ट्रेणाद्य स्वातन्त्र्य सेनानी शहीद भगत सिंहः तस्य जयन्त्यवसरे संस्मर्यते। अपि च एशियन क्रीडा प्रतिस्पर्धासु भारतेन अद्य स्वपदक तालिकायां पञ्च नूतनानि पदकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टवत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सर्वोच्च न्यायालयेन आगामी मासस्य 15 दिनांकतः प्रवर्तमानेषु 2000 रूप्यकाणां निर्दिष्ट व्यक्तितः व्यापारी यूपीआई व्यवहारेषु एमडीआर इति शुल्क प्रवर्तनस्य केन्द्र सर्वकारस्य निर्णये स्थगनादेशे असम्मतिः प्रदर्शिता। न्यायमूर्तेः सूर्यकान्तस्य, न्यायमूर्तेः जयमाल्य बागचीनः अथ न्यायमूर्तेः वी मोहनस्य च पीठेन केन्द्र सर्वकाराय भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्मै अन्येभ्यश्च प्रतिवादिभ्यः सूचनापत्रं प्रेषयित्वा 4 सप्ताहेषु प्रत्युत्तरं समर्पयितुं निर्दिष्टम्। केन्द्रस्य पक्षं स्थापयता अतिरिक्त महान्याय अभिकर्त्रा एन वेंकटरमणेन उक्तं यत् पेमेंट गेटवे इत्यस्य 90% प्रयोक्तारः अस्मात् शुल्कात् मुक्ताः एव स्थास्यन्ति। इयं जनहित याचिका अधिवक्ता अञ्जनदत्तेन उपस्थापिता आसीत्। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इत्यनेन अद्यारभ्य प्रारभ्यमाणा त्रिदिवसीया राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यविराम योजना स्थगितीकृता इति उद्घोषितम्। अयं निर्णयः भारतीय बैंक संघेन सह संवादात् परं गृहीतः। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघेन सामाजिक संचार पटले न्यरूपियत ह्यः रात्रौ आईबीए अथ सप्त बैंक संघानां यूएफबीयू इत्यस्य च मध्ये कार्यविराम संबद्ध विषयेषु सम्पन्नायाः मन्त्रणायाः अनन्तरम् एषः निर्णयः संजातः। पूर्वं यूएफबीयू अन्यैश्च सार्वजनिक क्षेत्रस्य बैंक संघैः सितंबर मासस्य 28 30 दिनांकं यावत् त्रिदिवसीयस्य कार्यविरामस्य आह्वानं कृतम् आसीत्। तेषां मुख्यतया याचनाद्वयम् आसीत्, सप्ताहे 5 कार्यप्रणाल्याः प्रवर्तनम् अथ च कार्यसम्पादनसम्बद्ध प्रोत्साहनयोजनायाः प्रत्याहारः। भारतेन अद्य सर्जिकल स्ट्राइक इत्यस्य दशमी वार्षिकी आमान्यते, येन प्रहारेण विश्वस्य पुरतः नरेन्द्र मोदी सर्वकारस्य आतंकवाद विरोधी नीतेः कश्चन नूतनः प्रभावकारी च दृष्टान्तः उपस्थापितः आसीत्। 16-2000 सितंबर मासस्य 28-31 दिनांकयोः रात्रौ भारतीय सेनया पाक अधिकृत जम्मू काश्मीरे नियंत्रण रेखायाः पारस्थितेषु आतंकवादिनां प्रस्थान केन्द्रेषु लक्ष्यकेन्द्रिताः प्रहारः विहितः। एतत् सैन्याभियानं तस्मिन्नेव मासे उरी सैन्यशिविरे सञ्जातस्य आतंकी आक्रमणस्य प्रत्युत्तरम् आसीत्, यस्मिन् 21 भारतीय सैनिकाः वीरगतिम् अवाप्नुवन्। इयं वार्षिकी राष्ट्रिय सुरक्षातन्त्रे विगत दशके आगतानां दृढ परिवर्तनानां द्योतिका वर्तते। ह्यः

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलगुलशन पूनम के संग। फिलहाल वक्त है एक खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

महेंद्र कपूर, आशा भोसले और सलमा आगा की खूबसूरत आवाज में फिल्म निकाह से आपने खूबसूरत सी कव्वाली सुनी। अगला नगमा और भी खूबसूरत, बोले चूड़ियां। फिलहाल 6:45 और फटाफट ये खूबसूरत सा नगमा आप सब तक पहुंचा देती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए।

गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित। आवाजें कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण और सोनू निगम, और फिल्म का नाम कभी खुशी कभी गम। फिलहाल 6:52 और बेहद खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: 6:55 और थोड़ी देर के लिए दीजिए पूनम को आगे, लौट कर फिर आऊंगी आप सबके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम दर्पण। वक्त होगा 7:30। जाते जाते खूबसूरत नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए साथ रहिए।
1: मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: में वैष्णवी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक के डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
1: Annually, we have been meeting regularly.
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपैंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर ना हो। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि अब किसान बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया की डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियां का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। वहीं महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने रजत पदक देश के नाम किया। भारत के ही रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani.

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण पूनम के संग। दर्पण के अंतर्गत एक नज़र, और एक नज़र के अंतर्गत फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ विश्व रेबीज दिवस के बारे में। हर साल 28 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को रेबीज जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूक करना और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में बताना है। यह दिन फ्रांसीसी वैज्ञानिक और सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने दुनिया का पहला रेबीज का टीका विकसित किया था। इस विशेष दिवस पर विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों और विद्यालयों द्वारा जागरूकता शिविर, आवारा पशुओं के टीकाकरण अभियान और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि थोड़ी सी सजगता, समय पर टीकाकरण और पशुओं के प्रति जिम्मेदारी से हम रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान अमर सेनानी और क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की जयंती हर साल 28 सितंबर को पूरे देश में बड़े सम्मान के साथ मनाई जाती है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा, जो कि अब पाकिस्तान में है, में एक देशभक्त परिवार में हुआ था। भगत सिंह ने कम उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने क्रांतिकारी विचारों तथा अदम्य साहस से भारतीय युवाओं के दिलों में इनकलाब की अलख जगाई। उनकी जयंती हमें उनके महान बलिदान, राष्ट्र प्रेम और समाज के प्रति समर्पण की याद दिलाती है, जो आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय संगीत जगत की अमर स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती हर साल 28 सितंबर को मनाई जाती है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। अपने 7 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में हजारों सुरीले गीत गाकर दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। उनकी सुरीली और जादुई आवाज आज भी हर भारतीय की स्मृतियों में जीवित है। यह विशेष दिन उनकी महान कला, संगीत में उनके अद्वितीय योगदान और उनकी मधुर यादों को समर्पित है, जो हमेशा अमर रहेगी। 7:33, एक नजर के अंतर्गत फिलहाल इतना ही।

गीतकार हैं गुलजार साहब और संगीतकार हैं हृदयनाथ मंगेशकर, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम लेकिन। 7:39 फिलहाल वक्त है साहित्य सरिता का, जिसके अंतर्गत आज मैं बात करने वाली हूं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में। हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के प्रमुख हस्ताक्षर और महान कथाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हिंदी कथा साहित्य में एक अत्यंत गौरवशाली और विशिष्ट स्थान है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुलेरी जी एक महान निबंधकार, आलोचक, संपादक और भाषा शास्त्री भी थे। गुलेरी जी ने हिंदी को अपनी केवल कुछ ही कहानियों से अमर कर

दिया। उनकी कुल तीन ही कहानियां मिलती हैं, जिनमें से एक कहानी ने उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया। उसने कहा था, यह हिंदी की पहली और मील का पत्थर साबित होने वाली श्रेष्ठ कहानी है जो फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति शैली पर आधारित है। लहना सिंह का अमर प्रेम और देशभक्ति इस कहानी की जान है। इसके अलावा सुखमय जीवन और बुद्धों का कांटा। निबंध की यदि मैं बात करूं तो उनके निबंध ज्ञान व्यंग और गंभीर चिंतन से परिपूर्ण है। उनका सबसे प्रसिद्ध और वैचारिक निबंध चंद्रमौगिया और कछुआ धर्म तथा पुरानी हिंदी है, जो उनके समाज सुधारक और इतिहास दृष्टि के परिचायक हैं। उन्होंने समालोचक और नागरी प्रचारणी पत्रिका जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का भी कुशलतापूर्वक संपादन किया। भाषा की यदि मैं बात करूं तो गुलेरी जी को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कई भाषाओं का गहरा ज्ञान था। उनकी भाषा प्रांजल, मुहावरे से युक्त और प्रसंगानुकूल होती थी। उनकी रचनाओं में मानव जीवन के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, कर्तव्य परायणता, प्रेम और नैतिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। गुलेरी जी ने मात्रा की दृष्टि से भले ही बहुत कम लिखा, परंतु उनकी गुणवत्ता और प्रभाव इतना गहरा था कि वे हिंदी साहित्य के अमर कहानीकारों में से गिने जाते हैं। उनकी कहानी, उसने कहा था, हिंदी कथा साहित्य का एक सर्वोच्च शिखर मानी जाती है। 7:42 साहित्य सरिता के अंतर्गत फिलहाल इतना ही।

गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद, आवाज़ अभिजीत भट्टाचार्य की और फिल्म का नाम अंजाम।

गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक और फिल्म का नाम मृत्युदंड।

0: নানা রঙের গানের অনুষ্ঠান এ পর্যন্তই। আকাশবাণী কলকাতা সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন। এখন খবর দিল্লি থেকে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে কনকলতা। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों

0: निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक के डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
3: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
2: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
4: So if you want to make more export,
5: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
4: 6%
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
6: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
7: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया,

ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि

0: सरकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
1: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
2: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकारिता भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
1: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency. Aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a six-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals. In men's javelin throw, Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump, Gulveer Singh in 1500 meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail.

नमस्कार दोस्तों, जनता के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन जब अचानक कोई बीमारी घर का दरवाजा खटखटाती है तो इलाज के खर्चे की चिंता जैसे चेहरे की सारी मुस्कान छीन लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बगैर किसी आर्थिक बोझ के बेहतरीन इलाज पा सके। जी हाँ, हमारा देश इसी दिशा में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्रांति का गवाह बन रहा है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की, जो सिर्फ सरकारी योजनाएं भर नहीं है बल्कि हर भारतीय नागरिक को सेहतमंद और आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब स्वास्थ्य सेवाएं भी आसान हो रही हैं। आज के

0: विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से जानेंगे कि आप और आपका परिवार इन सेवाओं का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत ही देश की असल तरक्की है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी को। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हम आपको बता दें हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर। लेकिन पहले मिलाना मत भूलिए दिल्ली का कोड यानी 011 और फिर घुमाइए 233-1048 या 23-717-117 या फिर 23-717-106 और 233-1-4444 पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर से भी अपने सवाल दोस्तों हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। आप हमारे ट्विटर @AIRNewsAlert पर भी टैग AskAIR के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है दोस्तों। और मैं देख रहा हूं कि हमारे एक श्रोता अभी हमसे लाइन पर जुड़ रहे थे और उम्मीद है कि फिर से वो लौटेंगे। बिल्कुल हमारे श्रोता आ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी कहिए, क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा किस उम्र के लोगों को किस तरह के इलाज को जो है सुविधा प्राप्त हो सकती है।
0: जी जी
1: नमस्कार।
2: कौन से अस्पतालों में?
1: नमस्कार वाजपेयी जी, ये प्रश्न पूछने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी श्रोता हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो सुविधाएं हैं इनके बारे में समझाने में ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आयुष्मान भारत PMJAY की योजना की जो लाभ है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को, अगर जो पात्र परिवार में होते हैं तो उनके लिए ये उपलब्ध है। तो जो भी पात्र परिवार है उनके जितने भी सदस्य हों किसी भी उम्र के हों वो इस लाभ का योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके। और अगर आप 70 वर्ष या उसके ऊपर के उम्र के हो तो आप भले किसी भी आय वर्ग के हो आपको इस योजना के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, आपको आयुष्मान कार्ड आपका बना सकते हैं। और जहां तक उले इलाज का सवाल है, आपको जो भी इलाज जो भर्ती होने योग्य है जिसमें आपको एक दिन या उससे अधिक भर्ती होना पड़ेगा, जो IPD सेवा कहते हैं, उसके अंतर्गत 27 स्पेशलिटी के अंतर्गत 1961 अलग अलग प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये सेवा जो है आप पूरे देश भर के अंदर लगभग 39,000 अस्पताल हैं जिसमें सरकारी अस्पताल तो है ही, इसके साथ साथ लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल भी हैं जो पंजीकृत हैं इस योजना के तहत, इसमें आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ही कैशलेस सेवा है, आपको किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क मिलेगा, आप जाएं अपना कार्ड दिखाएं पंजीकरण कराएं और जो भी आपकी सेवा है उसमें प्राप्त करें।
0: जी हम बात करेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके विषय में आपसे जानेंगे कि किन लोगों के लिए, ये तो 70 वर्ष में तो कोई आय की सीमा नहीं लागू हुई लेकिन क्या है उसके विषय में जानेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक और हमारे श्रोता हिसार हरियाणा से हमारे साथ लाइन पर हैं राजेंद्र जी। कहिए राजेंद्र जी, क्या है आपका सवाल?
3: मनीष जी को नमस्कार और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार
3: मिशेष जी, ये जानना था कि जो नया कार्ड बनवाना हो तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होगी और क्या कब कब बनते हैं, ये इसके बारे में जानना था। नमस्कार
1: राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको अगर अपना कार्ड बनाना है तो आप आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए से या फिर 1455 1 4

0: ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उस पे कॉल करके अपना कार्ड बनाने की जो जानकारी है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्ड जो है बनाने के लिए आपको, आपके पास अगर जो राशन कार्ड है जिसमें आप इस योजना के तहत जो शामिल है इन परिवारों को पहले से ही लिस्ट करके हरियाणा सरकार ने जो अपलोड किया है हमारे पोर्टल पे, उस पे आप अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डाल के आप इसको सर्च कर सकते हैं। इससे आप अपना आधार नंबर से अपना EKYC कर अपना कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ की जो अगर आपको ये चेक करना है कि आप पात्र है कि नहीं, आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में या CSC केंद्र में जाके अपनी ये जानकारी देके आप जो है कार्ड की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, हमारे जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं पब्लिक स्पीक और चर्चा कर रहे हैं हम आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर, और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी हमारे साथ। तो आप भी हमें फोन करके सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अब पूछ रहे हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे श्रोता हैं योगेश। कहिए योगेश जी, क्या है आपका प्रश्न?
2: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार।
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती है आयुष्मान भारत, तो उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा हिम केयर स्कीम चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि हम कौन सी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ले और किस तरह से ले, और पता कैसे चलेगा? क्यों ऐसा भी हो सकता है कि इस दौड़ में हम इन दोनों ही स्वास्थ्य लाभों से वंचित रह जाए? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आपकी जो स्कीमें होती है जहां पर क्लैश कर रही है सेंटर की भी और स्टेट की भी, तो ऐसी स्थिति में हमें साधारण नागरिक को क्या करना चाहिए?
0: योगेश जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि PMJAY के अलावा हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लगभग 56 अलग स्कीम चलती है जो राज्य सरकारों के भी है। लेकिन इसमें एक मुख्य विषय आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप PMJAY के जो लाभार्थी हैं और उस योजना के अंदर पात्र हैं, तो आपके जो परिवार हैं, जो पात्र परिवार है, इनकी सूची पहले से तय की गई है और ये ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से ही डाला हुआ है। जहाँ तक राज्यों के स्कीम का सवाल है, और जो लोग इन योजनाओं में कवर नहीं होते हैं, मान लीजिए हिमाचल में मान लीजिए कुछ परिवार जो है PMJAY के अंतर्गत आते हैं, और अगर आप उस परिवारों में नहीं आए हैं, तो अन्य परिवार जो हैं जो राज्यों के स्कीम में ये कवर होते हैं, जैसे कि हिमाचल का हिमकेयर है। एंड ये भी एक मैं बताना चाहूँगा कि PMJAY स्कीम जो है ये बिल्कुल निशुल्क है। मतलब आप इस स्कीम के अगर, क्योंकि और ये गरीब परिवारों के लिए है, आपको याद होगा 2011 में एक सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें परिवारों की जो गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार है उनका भी चिन्हांकन किया गया था। तो इन ऐसे परिवारों को चुना गया है कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं, और गरीबी के जो 40% सबसे नीचे परिवार जो हैं उनको इसमें स्कीम में लिया गया है। उसके अतिरिक्त जो है कुछ राज्य जैसे हिमाचल है, कई राज्य है जिन्होंने बाकी लोगों को कवर करने के लिए भी कुछ स्कीम लिया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या PMJAY के अंतर्गत कवर्ड है, आपका परिवार उसमें है। उसके लिए बहुत ही आसान है, आयुष्मान ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर से, और उसमें आप अपना आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका परिवार PMJAY के अंतर्गत आता है कि नहीं। अगर PMJAY के अंतर्गत आता नहीं है, तब आप देखिएगा कि आपके स्टेट का जो स्कीम है, राज्य के जो योजना है, उसमें अंतर्गत कवर आप उसमें पा सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में आपको एक प्रीमियम फीस उसमें देनी होती है, एनरोलमेंट बेस्ड फीस है, वो करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ये है, कुछ राज्यों में निःशुल्क है। तो आपके राज्य में जो स्कीम लागू है उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे

0: पहले आपको देखना है कि आप पीएमजे के अंतर्गत कवर्ड है कि नहीं, और जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत ही आसान है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं चेक, 1-1455 पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, और आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी आप ये पहले चेक कर सकते हैं।
1: जी, हिमाचल प्रदेश के बाद अब ये कॉल हमारे श्रोता कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, छतरपुर मध्य प्रदेश से, राशिद अहमद खान, कहिए क्या है आपका सवाल।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
2: सबसे पहले दो महान विभूतियों को, लता मंगेशकर जी को और भगत सिंह साहब को, मैं अब पूरे देशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनकी जन्म जयंती पर।
1: जी,
2: छोटे छोटे दो निवेदन सर। एक तो ये कि एक आयुष्मान कार्ड से एक फैमिली में कितने सदस्य कवर होते हैं। दूसरा ये कि अगर बीपीएल का राशन कार्ड नहीं है तो किस कितने आधार, मतलब आर्थिक आधार तक पे उसके आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल सकती है।
1: जी, दो सवाल आपने किए कि कितने सदस्य, और दूसरा आपने उनका जो एलिजिबिलिटी है उसके विषय में पूछा है। जी
0: राशिद खान जी, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि एक कार्ड पे परिवार के कितने सदस्य कवर होते हैं, मैं आपको इसमें आपको बता दूं कि जो पात्रता है इस योजना के अंतर्गत एक पूरे परिवार की है। तो अगर आपका परिवार पात्र परिवार में शामिल है तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में एक व्यक्ति हो, दो हो, तीन हो या उससे अधिक हो, ये सारे जो हैं किसी भी उम्र के हों, ये सभी इसमें कवर होते हैं। और रही दूसरी बात, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, ये मैं पहले बता दूं कि जो योजना के अंतर्गत जो शामिल करने की जो मापदंड है, जैसे मैंने कहा कि एसईसीसी सर्वे जो हुआ था उसके अंतर्गत अलग अलग पैमाने लगाए गए थे कि जैसे गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, अलग अलग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आपका जो समग्र आईडी है, मध्य प्रदेश से आप कॉल कर रहे हैं तो आपके यहाँ समग्र आईडी का प्रचलन है, तो समग्र आईडी को के माध्यम से आप जो हमारा आयुष्मान ऐप है या व्हाट्सएप चैटबॉट है या फिर अपने नज़दीकी अस्पताल में इस समग्र आईडी को इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आप इन शामिल परिवारों में जो पीएमजे के अंतर्गत भी हैं और उसके अतिरिक्त जो राज्य की स्कीम के अंतर्गत है, इसमें आप चेक कर सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये राज्य तय करते हैं। उसमें जैसे पहले जितने भी पीएमजे के अंतर्गत परिवार, लगभग 12 करोड़ परिवार पूरे देश में शामिल थे, उसके अतिरिक्त उसको बढ़ाते हुए लगभग 37 लाख परिवार अपने आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के परिवारों को जुड़ा गया। उसके बाद फिर 70 वर्ष के ऊपर के प्रति उम्र के प्रति नागरिक को इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से जैसे पीएमजे का जो मापदंड है वो बहुत ही स्पष्ट है, उसके और उसके अंतर्गत अगर राज्यों ने अपना अपना स्कीम को एक्सटेंड किया है और परिवारों को शामिल किया है, तो मध्य प्रदेश में आप समग्र आईडी का उपयोग करके इस आपकी पात्रता को आसानी से चेक कर सकते हैं।
1: तो राशिद खान जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जिज्ञासा है उसका समाधान अवश्य हुआ होगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, जगदीश जोशी जी। जोशी जी, क्या है प्रश्न?
3: सर नमस्कार।
1: नमस्कार
3: और शुभ संध्या आपको भी और जो विशेषज्ञ बैठे हैं इनको भी।
1: जी,
3: तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरी एज है 49 और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ टोटली, और घर में हमारे 5 मेंबर है, वाइफ है और 3 बच्चे हैं, जिसमें देखिए 2 बच्चे एडल्ट हैं, हालांकि वो पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल जॉब वगैरह नहीं करते, और एक छोटा बच्चा है, मुझे 6 में पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा ये कार्ड बन सकता है? मेरे पास बीपीएल फैमिली से आता हूँ, बीपीएल कार्ड भी है, और दूसरी बात ये है कि हम 5 में से 4 लोग मेंशन है उस कार्ड में, छोटा बच्चा जो उसको हमने 2018 से अप्लाई करा हुआ है, लेकिन अब बीपीएल कार्ड में उसकी एंट्री है नहीं, तो क्या उसको भी उस कार्ड का लाभ मिल पाएगा या नहीं, और कैसे और कहाँ बनेगा? तो मुझे इस बारे में थोड़ा अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी से अवगत कराएं सर।
0: जगदीश जी, प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने दूसरे श्रोताओं से कहा है, पात्रता ढूंढने के लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका है हमारे कॉल सेंटर पे 1-4555 में कॉल करके पूछना, जिससे आपको समझ में आएगा, वो बता सकेंगे कि आप इस योजना में कवर है कि नहीं। और दिल्ली में जो पात्र

0: परिवार हैं उनके लिस्ट में से चेक करके आपको बताया जाएगा। अगर आपके बच्चे आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, एक बहुत ही आसान है। और दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा, अगर कोई भी परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों में शामिल होता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य इसमें कवर्ड हैं। इसमें आपको जो आपका कार्ड है, राशन कार्ड है, या उसमें आपके जो भी नए परिवार के सदस्य हैं, जैसे कोई जन्म हुआ किसी का, या किसी के शादी होने से कोई नई बहू आई, इस तरह से नए सदस्यों के जोड़कर ऑटोमेटिकली जो है आप के नए सदस्य जो है इस योजना में जुड़ जाएंगे।
1: जी, एक और हमारे श्रोता दिल्ली से ही धर्मवीर जी हमारे साथ लाइन पर हैं। धर्मवीर जी, प्रश्न कहिए अपना।
2: अमित जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मैं धर्मवीर गांधी में दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी,
2: मेरे दो सवाल हैं कि जैसे मदर की सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की जो कार्ड बना, एक ही कार्ड बना, उसमें 5+5 लिखा आया है, ये क्या हम सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ही कार्ड माने? दूसरा, क्या अगर फैमिली में दूसरा भी कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसका भी अलग से कार्ड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता? और साथ में ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राशन कार्ड में तो नए नाम तो कुछ जुड़ते नहीं है, चाहे परिवार में नया सदस्य आए, कोई बच्चा हो तो उसका नाम नहीं कहीं जुड़ पाता, ऐसा क्यों हो रहा है? और लास्ट में एक छोटी सी बात और रखूंगा मुनीश जी, अभी लाइन पे बोला जा रहा था।
1: जी, जहां तक आपने बात कही राशन कार्ड में क्यों नहीं जुड़ पाता, वो एक अलग विभाग की समस्या है। लेकिन हाँ, जो आपका ये प्रश्न था उसके विषय में, जो पहला है उसके विषय में जरूर हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे।
0: धर्मवीर जी, जैसे आपने कहा है कि आपके परिवार में एक सदस्य है जो 70 वर्ष के ऊपर है, महिला है, और उनको कार्ड में दिया गया है जिसमें लिखा है 5+5। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो योजना चल रही है इसमें भारत सरकार के तरफ से जो 5 लाख का कवर दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख का कवर और दे रही है। तो इसका मतलब यही है कि उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी योजना के अंतर्गत आपको 5+5 पूरे 10 लाख का कवर का लाभ मिलेगा। और जहाँ तक दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य जो सीनियर सिटीजन बाद में होंगे, उन्हें भी इस आयुष्मान व्यय वंदना के अंतर्गत कवरेज मिलेगा, जिसमें आपके अभी जो मौजूदा लाभार्थी हैं वो, और जो भी नए लाभार्थी 70 वर्ष के अतिरिक्त ज़्यादा होंगे तो उनको भी इसी योजना के अंतर्गत जोड़ के उसको एक परिवार मान के दोनों को 5+5 लाख का जो है लाभ दिया जाएगा। उनका भी कार्ड जो है, जैसे ही वो 70 वर्ष पार करते हैं, पूरा करते हैं, तो उनका भी कार्ड बनाया जा सकता है।
1: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे भास्कर साहब कि आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है वो क्या है, उसका दायरा और किस तरह से जो उसकी प्रगति है और आम लोगों तक क्या उसकी पहुंच है, इस विषय में बताइए।
0: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और फ्यूचरिस्टिक योजना है, जो आने वाले जो तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के जो भी डेवलपमेंट है, इन सब का लाभ किस तरह से हेल्थ सेक्टर में लाया जाए और उससे जो जो लाभार्थी हैं, जो सिटीजन हैं, नागरिक है, उनको बेहतर सेवाएं दिया जाए, इसके लिए ये स्कीम बेसिकली बना गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो पूरे देश में अलग अलग अस्पताल हैं या कोई लैब है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो निजी अस्पताल भी हैं और सरकारी अस्पताल भी हैं, इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तरीके से जोड़ना, ताकि जो भी मरीज हैं उनके जो आज के दिन में जो हेल्थ रिकॉर्ड बनते हैं, कोई डॉक्टर पर्ची लिखते हैं, या कहीं आप भर्ती होते हैं तो उसका डिस्चार्ज रिपोर्ट मिलता है, या कहीं आप टेस्ट कराने जाते हैं तो उसका टेस्ट रिपोर्ट मिलता है, आज के दिन में हमारे पास एक कागज में ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि इन सभी को डिजिटाइज किया जाए, ताकि डिजिटल तरीके से इन सभी कागजों को एक साथ रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाए तो इतना बड़ा कागजों का गट्ठा ले जाने के बजाय ये डिजिटल माध्यम से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से ये डेटा चला जाए।

0: और जैसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री, ये किसी भी व्यक्ति को बचपन से लेके बड़े होने तक जो भी अलग अलग समस्याएं हुई हैं स्वास्थ्य के, उन सब की जानकारी हो साथ में, ताकि जब भी आप एक नए केस के लिए, नए इश्यू के लिए डॉक्टर के पास जाए तो उनको पता हो कि अच्छा 2 साल पहले क्या हुआ, उस समय आपने क्या दवाई ली, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ताकि आपको आज बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। सो जैसे UPI के माध्यम से आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन हर जगह कर पा रहे हैं, इसी तरह ये पूरा तंत्र जो है एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर जो नागरिक है उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ देना और सारे हेल्थ सर्विसेज को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से और लेटेस्ट तकनीक को उपयोग करके ये दूर दराज इलाकों में भी ये सेवाएं को और स्पेशलिस्ट सेवाओं को बेहतर तरीके से देने का एक ये प्रयास है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी, जो आभा नंबर कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दिया जा रहा है। अभी तक लगभग 98 करोड़ लाभ आभा नंबर बन चुके हैं और इसके माध्यम से जहां आप अस्पताल में जाएं तो वहां इस नंबर से पंजीकरण हो, ताकि जहां जहां पर भी आप जा रहे हैं उन सभी जो दस्तावेज है डिजिटल रूप में एक जगह पे उपलब्ध हो, ताकि आपको आगे बेहतर सेवाएं मिल सके।
1: जी हाँ, यानी कोशिश कुल मिलाकर ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, कि जो रोगी हैं, मरीज हैं, उन्हें अपनी पर्चियां, पुरानी रिपोर्ट, फाइलों के बंडल लेकर के घूमने की ज़रूरत न पड़े और उपचार उन्हें सरलता से उपलब्ध हो। हमारे श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुनाथ जी। जी गुरुनाथ जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका?
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा तो 2 क्वेश्चन है। ये जो आयुष्मान कार्ड है उसके अंतर्गत दायरे में के मतलब कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है हेल्थ के रिलेट, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये जो कितने मतलब प्राइवेट सेक्टर या सरकारी हॉस्पिटल सभी इसमें जुड़े हुए हैं। और मेरा तीसरा सवाल है, जब कोई प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल इसको कभी कभी देखा गया एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते बिल के बारे में जब बोला जाता है, तो इसके बारे में कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है इसके बारे में?
0: गुरुनाथ जी, ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं पहले कह रहा था, इस योजना के अंतर्गत 27 स्पेशलिटीज के अंतर्गत लगभग 1961 प्रोसीजर, जिसमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, हृदय रोग के संबंधित सभी रोग, डायलिसिस, आँख के संबंधित रोग और इस तरह के कई सारे जो स्पेशलिटी है इसके अंतर्गत, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है और कैटरैक्ट ऑपरेशन है और जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल है, आई मीन 1961 अलग अलग प्रोसीजर हैं। लगभग जो भी बीमारियां होती हैं आम तौर पे, जिसमें आपको सर्जरी करानी पड़े या किसी में आपको भर्ती करना पड़े 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितना भी उसमें आवश्यकता हो, इस तरह के सभी बीमारियां कवर है। जैसे मैं कहूँगा कि लगभग सभी बीमारियां जो हैं इसमें कवर्ड हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, पूरे भारत में लगभग 39,000 अस्पताल हैं जहाँ पर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं तो ज़रूरी नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में ही आपको ये लाभ मिलेगा। आप अगर गुजरात जाएं या दिल्ली आएं या कहीं भी अगर जाना पड़ा आपको और आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो इस योजना के अंतर्गत आप अपना आयुष्मान कार्ड दिखा कर आप उसमें लाभ ले सकते हैं। तो प्राइवेट में 18,000 से अधिक अस्पताल हैं जो इसमें कवर हैं, जो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं पूरे देश भर में। तीसरा प्रश्न आपका ये था कि अगर कोई अस्पताल आपको मना करे या पैसा मांगे, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल ही इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का पैसा मांगना या ले देना इसमें ज़रूरत नहीं है। और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप, जैसे मैंने कहा, 1-4-555 1-4-555 पर आप कॉल करके तुरंत एक SOS ग्रीवांस, हम इसको कहते हैं, कि जिसको 5 घंटे के भीतर एक मतलब बहुत ही जल्द इस तरह के कंप्लेंट को हम लेते हैं, बहुत ही सीरियस गंभीरता पूर्वक लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई आपसे तुरंत बात करे, आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे बात करें और किसी और

0: प्रकाश राउत सोलापुर महाशय बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि दो तीन बार में एडमिट होने के बाद पुनः फिर से एडमिट होने के बाद जो खर्चा आएगा वो तो आयुष्मान में कवर हो जाएगा। दूसरा ये सवाल है कि 18 कोटी को नागरिकों को कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड वितरित होना चाहिए, ये मेरी गिनती है।
1: प्रकाश रावत जी, पहले मैं बता दूं, ये जो 5 लाख का प्रति परिवार प्रति साल का जो कवर है, मान लीजिए 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगले साल 31 मार्च तक ये 5 लाख का है, तो अगले साल 1 अप्रैल से फिर से 5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब प्रति साल आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। तो इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप केवल एक बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं या दो बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितने बार आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़े, उतने बार आप इसका योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार, जहां तक हमें पता है, जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है। मैं तो कहूंगा, आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने खुद कार्ड बना सकते हैं और आपके अड़ोस पड़ोस कभी कभी कार्ड जिनकी आवश्यकता है वो बनाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर या फिर आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से ये कार्ड आप खुद बना सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार भी जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है, तो आपके यहाँ पर भी ये कार्ड बन रहे होंगे।
2: अच्छा, ये देखिए वास्का साहब, कि हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जो CGHS स्कीम के लाभार्थी हैं, यदि वो ऐसी जगह रहते हैं कि वो उन्हें वहाँ लाभ उसका नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आयुष्मान के लाभार्थी होने के पात्र हैं?
1: बिल्कुल, जो आयुष्मान व्यय वंदना है, जो 70 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को कवर करने का स्कीम है, इसके अंतर्गत अगर आप CGHS या किसी राज्य सरकार के स्कीम में कवर हैं, लेकिन आपको लगता है कि PMJ के अंतर्गत जो लगभग 39,000 अस्पतालों में आपको लाभ लेने से बेहतर आपको लाभ ले लेना है, तो आप उस योजना को ना चुनकर PMJ व्यय वंदना को चुन सकते हैं। आप इसमें कार्ड बना सकते हैं और कार्ड बनाते समय आपके केवल डिक्लेयर करना होगा कि हम CGHS छोड़कर हम इस नई योजना में शामिल होना चाहते हैं।
2: जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ आपने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक नया विषय लेकर फिर होंगे हाजिर। आज्ञा दीजिए, मैं हूं मुनीश शर्मा, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
1: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में, और बॉक्सिंग में 3 और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर

0: 83.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56। तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली शिवशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हांगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेस में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। 4वें स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे। तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। 4वें स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारतीय चौकली 4वें स्थान पर रही, तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गई। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट-ऑफ का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट-ऑफ जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट-ऑफ में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट-ऑफ तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत की पदक की उम्मीदें यही खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशिमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है। लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया। बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: गोइंग टू द कुराश अरेना वेयर पिंकी बलहारा हैज सिक्योर्ड ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स अंडर 78 किलोग्राम कैटेगरी। पिंकी वॉज इन एक्शन इन द सेमी फाइनल टुडे अगेंस्ट साउथ

0: Korea's most women, and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semifinals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian courage. Pinky's medal is only India's third ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, four of our other Indian courage athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the courage arena.
1: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल तीन ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी तीन मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में तीन मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक तीन मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम दिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी तीन मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से दो दिन में भारत के लिए पदकों की दो हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज चार धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि दो आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
0: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter-final encounter. It was an extremely close contest, with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All-Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot off. She survived this shoot off and she's through to the quarter finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ

0: मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल तीसरे मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
0: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिलाओं ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
0: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौधरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झों को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सेपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन्स सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच, बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर, बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
0: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासु ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेनसांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेवआर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सर्वनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में नवे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में

0: चौथे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र अनुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में छठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में आठवें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत, एकता थामी।
0: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
1: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
1: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में तीन तीन भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। राश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे, और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन

0: पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 17वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts in recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shahzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted, more than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
2: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the 7th largest FDI source. The ultimate objective